गौ ब्राह्मण को कर लावो गोबर तर न जाई पोती टिका तैज पमाली धान मलेशा खाई अंतर पूजा पढ़े कते बा संजम तुरका।

एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरपौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सपं गुरप्रसाद चक्र चेहन अरवरण जात अर पात नहन जे रूप रंग अर रेख पेको कहन सकत के अचाल मूरत अनुभव प्रकाश सिम तोज कह जाय होट इंद्र इंद्राण सहान गणित जाय त्रिभावन महीप सुर नर असर नेत नेत बन त्रिण कहत तो सर्वनाम कथा कवन कर्म नाम वर्णत समत जिह सतगुर सिमरंत नैन के तिमर मिटा खैन जिह सतगुर सिमरंथ हृदय हर नाम दिनों दिन जिह सतगुर सिमरंथ जी की तपत मिटावै जिह सतगुर सिमरंथ रिद सिद्ध नव निद पावै सोई रामदास गुर वल भण मिल संगत धन धन करहो जे सतगुर लग प्रभ पाई है सो सतगुर सिमरहो नरहो सतगुर आयो शरण तुहारी मिला सुख नाम हर सोभा चिंता लाहे हमारी अवरण सूझा दूजे ठहर हार प्रयोता द्वारी लेखा छोड़ लेखा छूट है हम निर्गुण लेहो उबारी साध बख्शिंद सदा मेहरबाना सबना दे आधारी नानक दास संत पाछ परे राख लेहो एहो बारी तुमरी शरण तुम्हारी आसा तुम ही सजन सहेले राखो राखन हार दयाला नानक घर के गोले सुकौ टल गुर सेविया अहन सुसहज दर्शन परसया गुरु का जन्म मरण दुख होवै सिफत खसाम दी नूर अरसह कुरसह तुद जिठे सचे पातशाह मल जन्म जन्म दी

प्राप्ति। जाप हर हर हर और तारी, हर हर हर औखद जग पूरा। जाप हर हर होम मारी, हर हर आगम अगाध बोध। अपरंपर पुरख अपारी, जान कौ कृपा करहु जग जीवन। जान नानक तज सवारी, हर हर आगम अगाध बोध। अपरंपर पुरख अपारी, जान कौ कृपा करहु जग जीवन। जान नानक पैज सवारी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। तनासरी महला चौथा, घर पहला चौपदे। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, जो हर सी वह संत भगत। तिनके सब पाप निवारी, हम ऊपर कृपा कर स्वामी। रख

कला भरपूर दिसे जत कता नानक दासन दास तुद आगे बिनवता। श्लोक पवन गुरु पाणी पिता

प्रमत जोनी ते नाम सिमृत तारे नानक दर्श प्यास हर जियो आप ले हो सा।

0: अंत ना जाई लखिया रहाओ। जात में जो जोत में जाता अकल कला भरपूर रहया। तू सच्चा साहेब सिफत सवालियो जिनकी तीसो पार पया। कहो नानक करते किया बातां जो किश करना सो कर रहया।
1: सो दर राग असा महला पहला।

एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह पातशाही दसवीं कवियो बाच बेनती चौपाई हमरी करो हाथ दै रक्षा पूर्ण होए चित की इच्छा तब चरणन मन रह हमारा अपना जान करो प्रतपारा हमरे दुष्ट समय तुम काबहो आप हास दै मोहे बचावहो सुखी बसै मोरो परवारा सेवक सिख सबै करतारा मोर अच्छा निज कर दै करिया सब बैरन को आज संघरिया पूर्ण होए हमारी आसा तोर भजन की रह प्यासा तुम्हें छोड़ कोई अवर न त्याऊ जो वर चांस तुम ते पाऊ सेवक सिख हमारे तारिया चुन चुन सत्र हमारे मारिया आप हाथ दे मुझे बरिया मरण काल का त्रास निवरिया पूजो सदा हमारे पच्छा श्री अस तुझ जु करिय हो रक्षा राख लिहो मोहे राख नहारे साहिब संत सहाय प्यारे दीन बंद दुष्टन के हंता तुम हो पुरी चतुर्दस कंता काल पाए ब्रह्मा बवतरा काल पाए शिवजू अवतरा काल पाए कर विष्णु प्रकाशा सकल काल का किया तमाशा जवन काल जोगी शिव कियो वेदराज ब्रह्मा जूथियो जवन काल सब लोक सवारा नमस्कार है ताहे हमारा जवन काल सब जगत बनाया देव दैत जच्छन उपजाया आदंती कै अवतारा सोई गुरु समझियो हमारा नमस्कार तिसही को हमारी सकल प्रजा जिने आप सवारी सेवकन को सेवगुन सुख दियो सतरन को पल मोह बद कियो कट कट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछानत चीटी ते कुंचर स्थूला सब पर कृपा दृष्ट कर फूला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक की पीर पछानै घट घट की पट पट की जानै जबद करख करा कर तारा प्रजा धरत तब देह अपारा जब करख करत हो कब हो तुम मैं मिलत दे तर सब हो जीते बदन सृष्ट सब धारै आप अपनी बूझ उचारै तुम सब ही ते रहत निरालम जानत भेद भेद अर आलम निरंकार निर्विकार निर्लंब याद नील नाद सांब ताका मूड चारत भेदा जाको भेव न पावत बेदा ताका कर पाहन अनुमानत महामूड कश भेद न जानत महादेव कौ कहत सदा शिव निरंकार का चीनत नह पेव आप अपनी बुद्ध है जेती वर्णत भिन्न भिन्न तह तेती तुमरा लखा न जाए पसारा कहे विद सजा प्रथम संसारा एक रूप अनूप स्वरूपा रंक भयो राव कही भूपा अंडज जेरज सेत जकीनी उत्कुज खान बहर रच दीनी तहु
फूल राजा है बैठा, कहूँ सिमट भयो शंकर इकैठा। सगरी सृष्टि दिखाए अचंपव, याद जुगाद स्वरूप सुजंपव। अब रक्षा मेरी तुम करो, सिख बार सिख संगरो। दुष्ट जिते उठव तुत पाता, सकल मलेश करो रण काता। जे अस तुझता शरणी परे, तिनके दुष्ट दुखत हुए मरे। पुरख जमन पग परे तिहारे, तिनके तुम संकट सब टारे। जो कल को एक बार त्य है, ताके काल निपट नह है। रक्षा हुए ताय सब काला, दुष्ट रिष्ट टरे तत्काला। कृपा दृष्ट तन जाहे निहर हो, ताके ताप तनक मह हर हो। रिद्ध सिद्ध कर्मो सब होई, दुष्ट शास वै सकै न कोई। एक बार जिन तुम्हें संभारा, काल फास्ते ताहे बारा। जिन नर नाम तिहारो कहा, दारिद्र दुष्ट दोख ते रहा। खड़ग के तमें शरण तिहार,

लागे। वाजे अनहद तूरे, सुनते पुनीत कहते पवित्र, सतगुर रहया भरपूरे। बिनवंत नानक गुर चरण लागे,

प्रभ दाता दातार परया जाचकी सरना मिलै दान संतरेन जे लग पव जल तरना बिनत

देहो दर्श मन चाओ, भगत एह मन ठहरावै। बलियो चिराग अंधियार मह, सब कल उदरी एक नाम धर्म। प्रगट सगल हर भवन मह, जन नानक गुर पार ब्रह्म। सुनी अरदास स्वामी मेरा, सर्व कला बन आई। प्रगट भई सगले जुग अंतर, गुर नानक की वडियाई। मैं मूर्ख की केतक बात है, कोट परादी तरियारे। गुर नानक जिन सुनिया पेखिया, से फिर गर्भास न परियारे। ज्ञान ध्यान किस कर्म न जाना, सार न जाना तेरी। सब ते वड्डा सतगुर नानक, जिन कल राखी मेरी। सब ते वड्डा सतगुर नानक।

जो हम बंदी मोह फास हम प्रेम बदन तुम बादे अपने छूटन को जतन करहो हम छूटे तुम आराधे।

भगत नहीं संतपा, कह रविदास भगत इक बाडी, अब का स्यों कहिया जा कारण हम तुम आराधे। सो दुख अजहू सहिया कह रविदास भगत इक बाडी, अब का स्यों कहिया जा कारण हम तुम आराधे।

हम अवगुण परे एक गुण नहीं, अमृत शाड भिखै भिखाई, माया मोह परम पै फूले, सुत दारा स्यों प्रीत लगाई, एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत, ते मिलंत जम त्रास मिटाई, एक अरदास पाठ कीरत की, गुर रामदास राखहु शरणाई, एक अरदास पाठ कीरत की, गुर रामदास राखहु शरणाई। सुकहु टल गुर सेवियै, अहनिस सहज सोभाए, दर्शन परसियै गुरु कै, जन्म मरण दुख जाय, होवै सिफत खसम दीन, नूर अर सो कुरसो चटियाँ, तोद डिठे सचे पातशाह, माल जन्म जन्म दी कटिया, सज्जन सचा पातशाह, सिर शाह दशाह, जिस पास बैठिया सोहिया, सब ना दावे साहो, सज्जन सचा पातशाह, सिर शाह दशाह, जिस पास बैठिया सोहिया, सब ना दावे साहो। सतनाम

राग सोरठ बाणी भगत पीखन की एक ओंकार सतगुर प्रसाद नैनो नीर बह तन खीना पाए केस दुधवानी रुदा कंठ शब्द नहीं उचरे अब क्या करे परानी नैनो नीर बह तन खीना पाए केस दुधवानी रुदा कंठ शब्द नहीं उचरे अब क्या करे

ऐसी बेदन उपज खरी पाई वाकायाखद नाही हर का नाम अमृत जल निर्मल एहो औखद जग सारा गोर प्रसाद कह जन पीखन पावो मुख द्वारा हर का नाम अमृत जल निर्मल एहो औखद जग सारा गुर प्रसाद कह जन पीखन पावो मुख द्वारा वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सिर मस्तक रखिया पार ब्रह्म हस्त काया रखिया परमेश्वर आत्म रखिया गोपाल स्वामी तन चरण रखिया जगदीश्वर सर्व रखिया गुरदयाल है पै दुख विनाशन भगत वछले अनाथ नाथे शरण नानक पुरखे चुत है बिलावल महला पंजवा ताती वाओ न लगई पार ब्रह्म शरणाई जाओ गिरद हमारे राम कार दुख लगे न पाई सात गुर पूरा पेटिया जन बणत बनाई राम नाम आओ खत दिया काले बलाई रहाओ राख लिए तन रखन हार सब ब्याद मिटाई कहो नानक कृपा भई प्रभ भय सहाई सोहिला राग गौड़ी दीप की महला पहला इको अंकार सतगुर प्रसाद जय कर कीरत आखिय करते का होए बिचारो तित घर गावहु सोहिला सिवरिहो सृजनहारो तुम गावहो मेरे निरपाओ का सोहिला हौ वारी जित सोहिले सदा सुख होए रहाओ नित नित जीअड़े संभालियन देख गा देवनहार तेरे दान कीमत ना पवे ते सदाते कवन सुमार संबत साहा लिखिया मिल कर पावहु तेल देहो सज्जन असी सड़िया जे होवै साहिब स्यों मेल कर कारे हो पहुंचा सदड़े नित पवन सदन हारा सिमरिय नानक से देह आवन राग आसा महला पहला शै कर शै गुर शै उपदेस गुर गुर एको वेस अनेक बाबा जय कर करते कीरत होए सो कर राख वडाई तोए रहाओ विस्वे चसिया घड़िया पहरा थिती वारी माह होआ सूरज एको

नानक करते के केते वेस राग तनासरी महला पहला गगन मैथाल रव चंद दीपक बने तारिका मंडल जनक मोती धूप मल अनलो पवन चवरो करे सगल बन राय फूलंत ज्योति कैसी आरती होए पव खंडना तेरी आरती अनहता शब्द वजंत भेरी रहाओ सह सतव नैन नन नैन है तोहे कौ सह समूरत नना एक तोही सहस पद बिमल नन एक पद गंध बिन सह सतव गंध विचलत मोही सब मह जोत जोत है सोए ते सदै चानण सब मह चानण होए गौर साखी जोत प्रगट होए जोत इस भावै सो आरती होए हर चरण कवल मकरंद लोभित मनो अन दिनो मोहे आही प्यासा कृपा जल देहे नानक सारंग कौ होए जाते तेरे नाए वासा राग गौड़ी पूर्वी महला चौथा कामे क्रोध नगर बहु भरिया मिल साधु खंडल खंडा हे पूरब लिखत लिखे गुर पाया मन हर लेव मंडल मंडा हे कर साधु अंजलि पुन वड्डा हे कर डंडाओत पुन वड्डा हे रहाओ साकत हर रस साध न जानिया तिन अंतर हउमै कंडा हे ज्यों ज्यों चल है चुभ है दुख पाव है जमकाल सह है सिर डंडा हे हर जन हर हर नाम समाणे दुख जन्म मरण पव खंडा हे अविनाशी पुरख पाया परमेसर बहु सोभ खंड ब्रह्मंडा हे हाम गरीब मसकीन प्रभ तेरे हर राख राख वड वड्डा हे जन नानक नाम आधार टेक है हर नामे ही सुख मंडा हे राग गौड़ी पूर्वी महला पंजवा करो बेनंती सुनो मेरे मीता संत टहल की बेला इहां खाट चलो हर लाहा आगै बसन सोहेला औद कट है दिन सरणारे मन गुरमेल काज सवारे रहाओ एहो संसार विकार संसे मै है तुरियो ब्रह्म ज्ञानी जिस हे जगाए पिया वै एहो रस अकथ कथा तिन जानी जा कौ आए सोई बेहज हो हार गुरते मनहि बसेरा निज घर महल पावो सुख सहजे बहोर न होए गो फेरा अंतर जामी पुरख बिदाते सरदा मन की पूरे नानक दास एह सुख मांगे मोका कर संतन की तोरे अंतर जामी पुरख बिदाते सरदा मन की पूरे नानक दास एह सुख मांगे मोका कर संतन की तोरे।

पै कित फिराय, औ मैं दीर्घ रोग है दारू बे समाय, कृपा कर जा पणी तां गुर का शब्द कमाए

0: कूड़ मंडप कूड़ माड़ी कूड़ में सनहार कूड़ सोयना कूड़ रूपा कूड़ पहनन हार कूड़ काया कूड़ कपड़ कूड़ रूपया पार कूड़ मिया कूड़ बीबी खप होए खार कूड़ कूड़े ने वह लगा विसरिया करता किस नाल खिंचे दोस्ती सब जग चलन हार कूड़ मिठा कूड़ मख कूड़ मैपूर नानक मखाने बेनती तुद बाज कूड़ो कूड़ महला पहला
1: सच ता पर जानिया जर दे सच्चा खोई कूड़ की मल उतरा तन करे खच्चा तोई सच ता पर जानिया जा सच तरे प्यार नाउ सुन मन रसिया ता पाए मोख दवा सच ता पर जानिया जा जुक्त जाने जियो थर्त का साथ का विच दे करता भी हो सच ता पर जानिया जा सिख सच्ची ले

0: मदर बहन कोट सहन संग सोब कहत मां जशोद जसे दही पाद खाए जियो। देख रूप अत अनूप मोह महा मग पई किंकनी शब्द चनदकार खेल पाहे जियो। काल कलाम हुकम हाथ कहो कौन मेर सके ईशिवम ज्ञान ध्यान तरथिये चाहे जियो। सत साच श्री निवास आदि पुरुष सदा तू ही वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे जियो। सत साच श्री निवास आदि पुरुष सदा तू ही वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे जियो।
1: राम नाम परम ताम शुद्ध बुद्ध निरीकार बेसुमार सरबर को कहे जियो। सुथर चित भगत हित भेख तरियो हर नक्ष हरियो नख विदार जियो। शंख चक्र गदा पदम आप कियो चदम अपरंपर पार ब्रह्म लखे कौनता है जियो। सत साच श्रीनिवास।

प्रीत बसन कुंद दसन प्रया सहत कंठ मार मुकट शीश मोर पंख चाहे जो बेवजीर बड़े तीर धर्म अलख गम खेल किया अपने उचाहे जियो कथ कथा कथी न जाए तीन लोक रहा समाए सुते सिद्ध रूप धरियो साहन कैसा जियो सत सच श्री

सतगुर गोबिंद जियो बलहा शलन सबल मलन भगत फलन कान कुर नेह कलंक बजी डंक चढ़ू दल रविंद जियो राम रवन दुर्त दवन सकल भवन कुशल करण सर्ब भूत आप ही देवाद देव सहस मुख फनिंद जियो जरम करम मछ कछ हो ब्रहा जमुना क्या कूल खेल खेलो जिन गिंद जियो नाम तार ही ये तार तज विकार मन के अंध सत गुरु सत गुरु सत गुरु गोबिंद जियो श्री गुरु श्री गुरु श्री गुरु सत जियो गुर के मान निज निदान सत जान मंत्र है निस्बस्तर होए कल्याण लहे परम गत जियो काम क्रोध लोभ मोह जन जन सो शार तो हो मैं का फंद काट सा संग रत जियो देहो गेहो त्रे स्नेहो चित्त बिलास जगत ते हो चरण कमल सदा से हो दृढ़ता कर मत जियो नाम सार ही ए तार तज विकार मन गे अंध श्री

दर्शन परसया गुरु का जानम मरण दुख होवै सिफत खसाम दी नूर अरसह कुरसह तुद डिठे सच्चे पातशाह मल जनम जनम दी सजन सच्चा पातशाह सिर साहंद जिस पा

0: अथर्वण हुआ ना खुदाई लो भया, नील बस्तर ले कपड़े पहने तुरक पठानी अमल किया,
1: चारे वेद होए सचया पढ़े गुण।